がりかな。いへらまへらまへらまい。माता पांडव भाई और के भाई भने देखी उतापति परमात्मा 36 वर्ष पछाड़ी राज्य उनीले 36 वर्ष पछाड़ी यादवहरू जो दीप प्रकाश पाले सारा छिए भए प्रभास तिरामा देखे जसै कृष्णले देखबाने मनमा कुल छिए भयो जानु पर्यो लौ भनी सुरहारण होई भविष्यन पनि भयो दाजै बलराम पनि नारायण।

0: sip on your extreme energy drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: Media Extreme Energy Drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

नमस्कार रेडियो सैलम सामुदायिक एफएम बैने बथुपलु सात मेगाहर्ज बाटो म बजे प्रसाद साहब कोट आज विक्रम संवत 2083 साल शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन 2026 जून 22 तारीख आषाढ़ 8 गते सोमवार अष्टमी तिथि अब स्तुति करूं आयु द्रोण कुमार कैसरिया हो साक्षेण कल्पय भरी।

राजा नमस्कार सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नहीं परे का घरे मंडाखुन सवाले दुर्योधन समान कर्णई समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी होस सद्वात कई काममा राजा धर्म कुमार कैसरी होस श्री ब्रह्म ज्ञान आने विदुर कैसरी ज्ञान होस सुजनमा मानुन बड़ा

0: Tio, papko kya dara mansa tora balale jasle buari liyo. Sarai duki bhaye ra sugri bajile binti gare ko suni. Suriyu ko awab duka harda chubhane antai karanale guni.
1: मेरा नाम सूर्यवार थापा भिनपा तीन तारथली म हनुमान चालीसा रेकर्ड गर्न चाहन्छु श्री गुरु चरण सरोज रज निजम नम गुरु सुधारी वर्ण रघुवर विमल दशु जोदायको फलचारी बुद्धि हिन दोन जानकी सुनि र पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलश विकार ओम जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपिश तिम्लो उजागर रामदूत अजुल दबल्दामा अञ्जनी पुत्र पवन सुतनाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमती निवारी स्मृति संगी कंचन वर्ण विरास वेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बरजाओ ध्वज विराजई कांधे मुझे जने साजई शंकर सुबन केसर नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर पर्व चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दरी से दिखवाया विकट रूप बदल लंगाधर आया हेम रूप दरी असुर संहारी रामचंद्र की काज संहारी लाए सजीवन लखन जी आये श्री रघुवीर हरसिउर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहज बदन तुम्हारे जैसे गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादि ब्रह्मादि मुनिषा नारद सारद सहित ऐसा हेम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि गोविंद कैसे के कहते तुम उपकार सुग्रीव भाई कि ना राम मिलाए राजपद दिना तुम्हारो मंत्र भी विषण मान लंकेश्वर भय सब जग जान युग सहस्र योजन पर भानु लिलो ताई मद फल जानु प्रभु मंदिरी का मेली मुखमाई जल्दी लागी गए अतर जनाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुबारे तुम रखवारे होता न आज्ञा बिना पैसारे सब सुखलाई तुम्हारी शरणा तुम रक्षे काम को डरना आपन तेज समारोह आपे तीनों लोग हागते कापे भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हर सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कमर वचन ध्यान जलावे सब पर राम तब श्री राजा तिनके काज सकल तुम साजा अवरो मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगद जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नमनिधि के दाता असवर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारी पासा सदा रव रघुपति दासा तुम्हारी भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त खाई और देवता चिदन धरई हनुमत से ही सर्व सु करई संकट कटई मिर सब पीरा जोश मिरई हनुमत बलबीरा जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा कर हूँ गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छुटी बंदी माँ सुख हुई जो ये पड़े हनुमान चाइसा हो ये सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा किजनाथ हृदय मोहडेरा ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसवं श्रभु शिवर रामचंद्र शंकर जी बाजा जय हनुमान जय बजरंग बली।